0: अरे
1: लिंसे लो लो इमान जसी लागे इना मनोप छे जे इना यौशा थु थु सो जस तिली सुंगी
0: ना से ला ला
1: लो लो किरंग के से बांगदा दि मनोप छे जे इना ताउ जसी ला ला सरो ना
0: ना से ला ला
1: लो लो संजो टोबियो मेमिन दि यु से देन छ वो
0: ला ला जु वो
1: Nong sen ling ge le chen an che de shi be cha zun le na ge song she ju shi de na jia mian ge lang ge dan an be ki tang a se be song she de la song she de na an zu sen zhe xi zi sa ge ya shu be mi ma zhe xin la ku dan li na cha de tu nan song zhe de li shu yin song she de xie xi nan li na ki tang a dan ni bo che ju min du man song ne ni ji se cha sa kan ri ga bu de ji ki tang a dan ni bo ka ga de si ma song ki se yu yu ma ji kan ri pu chu cha de ki tang a dan ni bo sa ta jiang song ma song lu bu sa ta jiang 心不至于死的下来。那下面呢，你在南直直西北长村的那样给松雪九叔，啊，咱样给那个大南北其他啊，西北松雪的，恰恰老先生那的了。怕咱们家人呢，俺去穷人地方托人呢，西藏女人西北烫，电视西北先做，绝育西北烫，农村男孩西北先做，青春就是这么简单，西北烫一生开心为本质，西北先做，开心无敌西北烫，他能精神做蒙他几个人呢？怎么谈？看他那么些呢，恰到蒙他孤僻啥？托见那属于农村男孩西北先做。 可以呢，研究错了，去当给送，还将搞不有啊？你给我的历史记难啥？都见那输赢了。